मायू कहीं तुम से निगाह मुटी शर्ट आओ आओ किधर मितुबंग सदांगी रोसलायू